0: टीवीएस साथ छ हाम्रो।
1: ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्र शुक्ला हिलेटार शिवालयको विकास र दुग्धेश्वर महादेवको मन्दिर निर्माणका लागि सहयोग गर्ने महानुभावहरू
2: रन बहादुर गुरुङ दुलेगौडा रु 12,610,
1: किम बहादुर श्रेष्ठ दुलेगौडा रु 10,500,
2: पूर्ण बहादुर भण्डारी दुलेगौडा रु 50,115,
1: काजी रिमाल लाइफ जिम दुलेगौडा रु 11,000,
2: सिद्धार्थ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दुलेगौडा रु 11,111,
1: पार्वती रिमाल दुलेगौडा रु 10,100,
2: कृष्णराज पण्डित दुलेगौडा रु 25,000,
1: किरण कुमार श्रेष्ठ दुलेगौडा रु 1,02,174,
2: ठाकुर प्रसाद भट्टराई डोरफिर्दी उत्तम टोल रु 55,555,
1: कवासी खानी पानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति रु 11,101, बेल बहादुर भुजेल ढोलफिर्दी हिमाली टोल रु 10,120,
2: खिमलाल पौडेल ढोलफिर्दी हिमाली टोल रु 10,005,
1: धनमाया भट्टराई ढोलफिर्दी हिमाली टोल रु 50,000,
2: रेशम बहादुर थापा ढोलफिर्दी हिमाली टोल रु 11,111,
1: भीम प्रसाद वाग्ले ढोलफिर्दी हिमाली टोल रु 10,155,
0: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6, अ कम्प्लिट कॉल फॉर हेलो शुक्ला गण्डकी, हेलो हेलो
3: कम ऑन एवरीबॉडी, हेलो शुक्ला गण्डकी।
0: हाम्रो यही बसु बानी फोनमा गर्ने कुराकानी, फोन गर्नुहोस् कुरा गर्नुहोस्। Only on 97.6, a complete call show.
4: Program Hello Shukla Gandaki, only on Shukla Gandaki FM 97.6 MHz.

छाड खसलै कोना कतक पूछु उनी जे कोपर उगल तकर उत्सव करी रात अहिना भयावन अबै जाई छे अखन अंतस गागर किरणे।

छा जुवानी छे छाहिर छनक से छनही में छिहैल जते छही जका जे पियब से पियब जे जियब से जियब अखन जीवन के प्याला लबालब भरी।

सगरो सहसह करैत अछि गारी करैत छी बिहुर में जन्मल नियति हमर बनि सपेरा खेलाबी दिखधर के हम छी पलायन से नीक जे लड़ी वा मरी।

0: Kill it!
1: पागल है क्या? ट्रोल हो जाएंगे. नॉट एट ऑल.
0: बीनू डाल दे. ट्रोल हुए तो हो जाएगी.